0: कोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवा मोबाइल।
1: यो यो चेक इट आउट रीमिक्स। हंटर्स।